सिम्कोने शुरुए यांगदा रिरि चीजी सिंशिंबदीनी कावे जोंकी लुजु चिमो रिगे ग्याजु चुदी इन